ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लेंते आए फिर अंगद गुरते अमरदास रामदास सहाय। अर्जन हर गोविंदनो सिमराओ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई है जिस जिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमर करनो निध आवे ताए सब थाई हो सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहेब सब थाई हो सहाय। दसम पातशाह दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान करके बोलो जी वाहे गुरु। ए नमाणिया दी मान सतगुर नीताणिया दे तान सतगुर न्यासरिया दे आसरे तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी आप जी दी चन कमलम पास अरदास बेनती। सतगुरु जी आप जी ने अमृत वेले तो अपने तख्त ते प्रकाशमान होके संगतां नूं दर्शन दिदारे दे के निहाल कीता है जी। इस वक्त दीवाना दी समाप्ति तो उपरंत आप जी दे सरूप दी सेवा हुई है। गुरबाणी दे पाठ होए हन। गुरबाणी दे पाठ करदिआं सेवा करदिआं अनेक प्रकार दीआं गलतियां हो गईआं होणगीआं बच्चे समझ के मुआफ करना। अगे तो सेवा करन दी गुरबाणी पढ़न दी सुमत बख्शिश करनी। आप अपने सुख आसन ते विराजमान होवो। अमृत वेले फिर संगतां नूं दर्शन

जन्म जन्म के दुख निवारे भलेहारी गुरे अपने विटों जिन कारज सब सवारे हर प्रभ कृपा करे हर जप जापो सुख फल हर जन पावो।

0: नमः, सतगुरु नमः, श्री गुरुदेव नमः, अष्टपदी सिमरो सिमर सिमर सुख पावो,
1: कल कलेश तन माही मिटावो,
0: सिमरो जास बिसंबर एक है,
1: नाम जपत गणत अनेक है,
0: वेद पुराण सिमरत सुधि आखर,
1: इन्हे राम नामी का आखर,
0: इनका एक जी बसावे,
1: ताकी महिमा गणी न आवे,
0: कांखी एक है दर्श तुहारो,
1: नानक उनसंग मोहे उदारो,
0: सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम,
1: भगजना के मन बिसराओ,
0: प्रभ कह सिमरन गर्भ न बसे,
1: प्रभ के सिमरन दुख जम नसे,
0: प्रभ कह सिमरन काल पर हरे,
1: प्रभ के सिमरन दुश्मन टरे,
0: प्रभ सिमरत कछ बिगन न लागे,
1: प्रभ के सिमरन अंदिन जागे,
0: प्रभ कह सिमरन पौ न ब्यापे,
1: प्रभ के सिमरन दुख न संतापे,
0: प्रभ का सिमरन साध के संग,
1: सर्व निदान नानक हर रंग,
0: प्रभ कह सिमरन रिद सिद्ध नौ निद,
1: प्रभ के सिमरन ज्ञानति अंतत बुद्ध,
0: प्रभ कह सिमरन जप तप पूजा,
1: प्रभ के सिमरन बिन से दूजा,
0: प्रभ कह सिमरन तीरथ स्नानी,
1: प्रभ के सिमरन दरगह मानी,
0: प्रभ कह सिमरन हुए सुफला,
1: प्रभ के सिमरन सुफल फला,
0: से सिमर जिन्हें आप सिमराए,
1: नानक साके लागो पाए,
0: प्रभ का सिमरन सब ते ऊंचा,
1: प्रभ के सिमरन उदरे मोचा,
0: प्रभ कह सिमरन तृष्णा बुझ,
1: प्रभ के सिमरन सबकी सूझे,
0: प्रभ कह सिमरन ना ही जम त्रासा,
1: प्रभ के सिमरन पूरन आसा,
0: प्रभ कह सिमरन मन की मल जाए,
1: अमृत नामृत माहे समाए,
0: प्रभ जी बस साध की रसना,
1: नानक जन का दासन दसना,
0: प्रभ को सिमरह से तनवंते,
1: प्रभ को सिमरह से पतवंते,
0: प्रभ को सिमरह से जन परवान,
1: प्रभ को सिमरह से पुरख प्रधान,
0: प्रभ को सिमरह से बेह मोहताजे,
1: प्रभ को सिमरह से सर्व के राजे,
0: प्रभ को सिमरह से सुखवासी,
1: सिमरह से विनाशी,
0: प्रभ सिमरन से लागे जिन आप दयाला,
1: नानक जन की मंगेर वाला,
0: प्रभ को सिमरह से पारे उपकारी,
1: प्रभ को सिमरह तिन सद बलिहारी,
0: प्रभ को सिमरह से मुख सुहावे,
1: प्रभ को सिमरह तिन सुख बिहावे,
0: प्रभ को सिमरह तिन आत्म जीता,
1: प्रभ को सिमरह तिन निर्मल रीता,
0: प्रभ को सिमरह तिन अंधक नेरे,
1: प्रभ को सिमरह बसे हर नेरे,
0: संत कृपा ते अंदिन जाग,
1: नानक सिमरन पूरे पाग,
0: प्रभ के सिमरन कारज पूरे,
1: प्रभ के सिमरन कब हुना चुरे,
0: प्रभ के सिमरन हर गुणवाणी,
1: प्रभ के सिमरन सहज समानी,
0: प्रभ के सिमरन नेह चले आसन,
1: प्रभ के सिमरन कमल बिगासन,
0: प्रभ के सिमरन अनहद चुनकार,
1: सुप्रभ सिमरन का अंत न पार,
0: सिमरे से जन जिन को प्रभ मया,
1: नानक तिन जन सरनी पाया,
0: हर सिमरन कर पग पगताए,
1: हर सिमरन लग भेद उपाए,
0: हर सिमरन पै सिज्जति दाते,
1: हर सिमरन नीच कुंठ जाते,
0: हर सिमरन कारी सब तरना,
1: सिमर सिमर हर कारण करना,
0: हर सिमरन कियो सगल आकारा,
1: हर सिमरन में आप निरंतर

0: हरि को नाम की महिमा उदारी, हरि को नाम कोट पाप पर हरे, नानक पावो सुख कनेरे,
1: सगल श्रेष्ठ
0: हर का नाम जपत हुए सुखिया, हर का

हर के नाम की तुम ऊपर छाम है, तेह नानक हर हर अमृत बरखे, संत जना के मन विश्राम है, हर के नाम उधरे जन कोट, हर हर औखद साध कमात, पार ब्रह्म जन की नौ दान, नानक जन के बिरत विवेक है, हर के नाम जन को त्रिपद भुगत, हर नाम जपत का पर न पंग, हर के नाम जन शोभा पाई, हर नाम जपत कछ नाही वियोग, नानक पूजे हर हर देवा, हर तन जन को आ प्रभु दीना, हर प्रताप जन हर जानी, सुन समाध नाम रस माते, हर का पगत प्रगट नहीं छपे, नानक जन संकेते तरे, काम देन हर हर गुण गाम, नाम सुनत दर्द दुख लथा, संत परताप दुर्त सब नसै,

0: सगल त्याग मन मध्य फिरिया।
1: अनेक प्रकार की है बहुत जतना,
0: पुण्य दान हो में बहु रतना,
1: शरीर कटाए हो में कर राती,
0: बर्तन में करे बहु पाती,
1: नेतुल राम नाम विचार,
0: नाने गुरमुख ना जपिए एक बार,
1: नौकन पत्नी फिर चिर जीव है,
0: माँ उदास तभी सर थीव है,
1: अगन माए हो मत परान,
0: कनक असुर है भरपूर दान,
1: योनि कर्म करे बहु आसन,
0: जैन मारे संजमियत साधना,
1: निमक निमक का शरीर कटावे,
0: तो भी हमें मैर न जावे,
1: हर के नाम संसार खचनाहे,
0: नान है गुरमुख नाम जपत गत पाहे,
1: मन कामना तीरथ दे छुटे,
0: गर्व गुमान मनते हुटे,
1: सोच करे दिन सर रात,
0: मन की मैर न तनते जात,
1: इससे ही कबो साधना करे,
0: मन ते कबू न बिख्या करे,
1: चल तो वह बो दे अनीत,
0: शुद्ध कहा हुए काची पीत,
1: मन हर के नाम की महिमा ऊंच,
0: नानक नाम उदरे पति बहु मूच,
1: बहुत सैनब जम का बहु व्यापे,
0: अनेक जतन का तिसन्ना त्रापे,
1: एक नेक अगर नहीं बूझे,
0: कोटो पावदर गए नहीं सिज्जे,
1: छूटे स्नाई उप्याल,
0: मोहे व्यापे माया जाल,
1: अवर कतु सगली जम डन,
0: गोविंद भजन बिन दिल नहीं।

0: जासा
1: नानक ताके बल बल जासा
0: सगल पुरख में पुरख प्रधान
1: सासंग जाका मिटे अभिमान
0: आपस को जो जाने नीचा
1: सो गणिये सब ते ऊंचा
0: जाका मन हुए सगल की रीना
1: हर हर नाम दिन कट कट जीना
0: मन अपने ते बुरा मिटाना
1: देख सगल श्रेष्ठ साजना
0: सुख दुख जन संदेश चेता
1: नानक पाप पुण्य नहीं ले।

0: तुम ते होए
1: नानक अवर्ण जानस कोए
0: सरब धर्म में श्रेष्ठ धर्म
1: हर को नाम जप निर्मल कर्म
0: सगल क्रिया में उत्तम क्रिया
1: साध संग दुर्मत मल हिरिया
0: सगल उद्यम में उद्यम फला
1: हर का नाम जपो।

0: पारी
1: रमैया के गुण चेत परानी
0: कवन मूलते कवन दिसानी
1: जिंतु सात सवार सिंगारिया
0: गर्वागन मैं जिने उबारिया
1: बार व्यवस्था तुझे प्यारे दूध
0: पर जो वन पोजन

0: पर सुख बसै
1: सुत परात मीत बनता संग हसै
0: जय प्रसाद पीवे शीतल जला
1: सुखदाई पवन पावक मुल्ला
0: जय प्रसाद भोगे सब रसा
1: सगल सामग्री संग साथ बसा
0: दीने हस पाप कर नेत्र रसा
1: जिसे त्याग अवर संग रचना
0: ऐसे दुख मुड़ अंध पे आपे
1: नान काडले हो प्रवे आपे
0: आदंत जो राखन हार
1: शिष्य प्रीत न करे गवार
0: जाकी सेवा नवनत पावे
1: तासे मूड़ा मन नहीं लावे
0: जो ठाकुर सत सदा हजूरे
1: ताको अंधा जानत दूरे
0: जाकी टहल पावे दरगे मान
1: जिसे बसारे मुग्ध जान
0: सदा सदा ए फूलन हार
1: नानक राखन हार अपार
0: रतन त्याग कोडी संग रच
1: साध छोड़ झूठ संग मच
0: जो छन्ना सो स्थिर कर मान
1: जो हो वन सो दूर पर आने
0: छोड़ जाए तिसका सम कर
1: संग सहाय तिस पर हर
0: चंदन ले पुतारे तोए
1: गर्त प्रीत पसम संग होए
0: अंधकूप में पतित बिकराल
1: नानक काडले हो प्रभ दयाल
0: सतूत पशु की मानस जात
1: लोक पचारा करे दिन रात
0: बाहर एक अंतर मल माया
1: शप्श नाई कछ करे छपाया
0: बाहर ज्ञान ध्यान स्नान
1: अंतर व्याप लोभ सुहान
0: अंतर अगन बाहर तन स्वाह
1: गल पाथर कैसे तरे अथा
0: जाके अंतर बसे प्रभाप
1: नानक दे जन

0: जुगत बिहान ने कही जन्म
1: नानक राख ले हो अपन कर कर्म
0: तू ठाकुर तुम पैर दास
1: जियो पिंड सब तेरी रात
0: मात पिता हम बारक तेरे
1: तुमरी कृपा मैं सुख कनेरे
0: कोई न जाने तुमरा अंत
1: ऊंचे ते ऊंचा भगवंत
0: सगल समग्री तुमरे सूत्र तारी।

0: ताकत की आर्जा
1: सच बिना कह हो वत सूचा
0: बिरथा नाम बिना तन अंदर
1: मुख्या वता कह दुर्गंध
0: बिन सिमरन तिन रैन बृथा बिहाई
1: मेघ बिना जो खेती जाए
0: गोविंद भजन बिन बृथे सब काम
1: कर भण के निरार्थ धाम
0: तन तन तीजन जिह कट बसियो हर नाओ
1: नानक था कह बल बल जाओ
0: रहत वर कछवर कमावत
1: मने प्रीत मुखों गंड लावत
0: जानन हार प्रभु पर बीन
1: बाहर पेख न काहू पीन
0: अवर उपदेश से आप न करे
1: आवत जावत जन में मरे
0: जिसके अंतर बसे निरंकार
1: जिसकी सीख तरह संसार
0: जो तुम पाने तिन प्रभ जाता
1: मान के उन जन चरण पर आता
0: करो बीनती पार ब्रह्म सब जाने
1: अपना किया आप माने
0: आप ही आप करे इतनी बेरा
1: किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा
0: उपाव सियान सगल ते रहत
1: सब कछ जाने आत्म की रहत
0: जिस पावे तिस ले लड़ लाए
1: मानत अंतर।

0: सब की गत हुए
1: नानक जाप जपै सब सोए
0: आप जपाई जपे सो नाओ
1: आप गवाए सो हर गुण गाओ
0: प्रभ कृपा ते हुए प्रगास
1: प्रभु दया ते कमल विगास।

0: अष्टपदी
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप
0: जैसे जल में कमला लेप
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख
0: जैसे सूर सर्व को सुख
1: ब्रह्म ज्ञानी के दृष्ट समान
0: जैसे राज रंग को लागे तुल पवान
1: ब्रह्म ज्ञानी के धीरज एक
0: जो बसदा को खोदे को चंदन लेप
1: ब्रह्म ज्ञानी का है गनाओ
0: नानक जो पाव

0: ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी
1: ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी
0: ब्रह्म ज्ञानी बंधन से मुक्ता
1: ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता
0: ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी।

0: पंच दुख दे रहत
1: मन कोट म देखो ऐसा परस
0: वैष्णो सो जिस ऊपर सुपर सन
1: विसन के माया ते होए पिन
0: करम करत हो वे नह करम
1: इस वैष्णो का निर्मल धर्म
0: काहू फल की इच्छा नहीं बाचे
1: केवल भगत कीर्तन संग

0: सदा निकट निकट हर जान
1: सो दास दर्ग है परवान
0: अपने दास को आप कृपा करे
1: इस दास को सब सो जी परे
0: सगल संग आत्म उदास
1: ऐसी जुगत नानक राम दास
0: प्रभ की आज्ञा आत्म हितावे
1: जीवन मुक्त सो कहावे
0: तैसा हर तैसा उस सोग
1: सदा अनंत नहीं बियोग
0: तैसा श्रुवन तैसी उस माती
1: तैसा अमृत तैसी बिखाती
0: तैसा मान तैसा अभिमान
1: तैसा रंग तैसा राजान
0: जो वरताए साई जुगत।

0: जगत वासी कई कोट पै तीरथ वासी
1: कई कोट ब्रह्म प्रमेय दासी
0: कई कोट भेद के स्रोते
1: कई कोट तप ईश्वर होते
0: कई कोट आत्म त्यान तारे
1: कई कोट कब का विचार है
0: कई कोट नवतन नाम ते आवे
1: ज्ञान कर दे का अंत न पावे
0: कई कोट पै अभिमानी कई कोट किरपन कठोर
1: कई कोट पे गातम ने कोर
0: कई कोट पर दर्प को हिरे
1: कई कोट पर दुख ना करे
0: कई कोट माया श्रम माहे
1: कई कोट पर देश पर माहे
0: जित जित लाभो तित तित लगना
1: नान करते की जाने करता रचना
0: कई कोट सिद्ध जति जोगी
1: कई कोट राजे रस भोगी
0: कई कोट पंखी सर्प उपाय
1: कई कोट पाथर ब्रेक ने पे जाए
0: कई कोट पवन पानी वे संतर
1: कई कोट देश भू मंडल
0: कई कोट सस्य सुख ने क्षतर
1: कई कोट देव दानव इंद्र सिर शतर
0: सगल सामग्री अपने सूत तारे
1: नानक जिस जिस पावे तिस तिस निस्तार
0: कई कोट राजस्थामस सातक
1: कई कोट वेद पुराण सिमरतर शास्त्र
0: कई कोट की ये रतन समुन्द्र
1: कई कोट नाना प्रकार जंत
0: कई कोट की ये चिर जीवे
1: कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थीवे
0: कई कोट जखेन किन्नर पिसाच
1: कई कोट पूत प्रे सुकर मेर गा
0: सबते नेरे सबूते दूर
1: मन का अलिप्त रहा पर पूर
0: कई कोट पाताल के वासी
1: कई कोट नरक स्वर्ग निवासी
0: कई कोट जन्मे जीवे मरे
1: कई कोट बह जोनी फिर है
0: कई कोट बैठत ही खाए
1: कई कोट काले थक पाहे
0: कई कोट की ये तनवंत
1: कई कोट माया में चिंत
0: जय जय पाणा तय तय राखे
1: नानक सब किश प्रभ कह हाथे
0: कई कोट पाए बैरागी
1: राम नाम संग तिन लेव लागी
0: कई कोट प्रभ को खो जनते
1: आत्म में पर ब्रह्म लहंते
0: कई कोट दर्शन प्रभ प्यास
1: इनको मिलियो प्रभ अविनाश
0: कई कोट मांगे सत्संग
1: पार ब्रह्म तिन लागा रंग
0: जिनको जिनको होए आप सुपरसन्न
1: नानक तेजन सदा तन तन
0: कई कोट खानी अर खंड
1: कई कोट आकाश ब्रह्मंड
0: कई कोट होए अवतार
1: कई जगत की नो बेसार
0: कई बार पसरियो पासार
1: सदा सदा एक कंकार
0: कई कोट की ये वो पात
1: प्रवते हुए प्रभ माहे समात
0: ताका अंत न जाने कोए
1: आपे अपना नानक प्रभ सोए
0: कई कोट पार ब्रह्म के दास
1: इन हो

0: कभु हुए बहे बड़ राजा
1: कभु बेकारी नीच का साजा
0: कभु अब कीरत में आवे
1: कभु पला पला कहावे
0: जो प्रभ राखे तिव ही रहे
1: घर पर साना नक सच कहे
0: कभु हुए पंडित करे बखान
1: कभू होए पंडित करे बखियान कभू मोहन तारी लावे ध्यान
0: कभू तट तीरथ स्नान
1: कभू सिसा दख मुख ज्ञान
0: कभू कीट हस्त पतंग हुई जिया
1: अनक जोन पर मैं परमिया
0: नाना रूप जो स्वागी दिखावे
1: जो प्रभ पावे तिवे नचावे
0: ज्योतिष पावे सोई होए
1: नानक दूजा

0: मैं जो बनवंत
1: सो वतमिष्ठा का जंत
0: आपस को कर मंत कहावे
1: जन्म मरे भोजन परम आवे
0: दान पुम का जो करे गुमान
1: सो मूर्ख अंधा ज्ञान
0: कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे
1: नानकिया मुक्ति आगे सुख पावे
0: धनवंता हुए कर गर बावे
1: ऋण समान कर संग न जावे
0: बहुलस कर मानक ऊपर करे आस
1: फल पीतरता का होए बिनास
0: सबते आप जाने बलवंत
1: किन में होए जाए पसमंत
0: किसे न बदे आप अहंकारी
1: कर्म राय तिस करे को आरी
0: गुर प्रसाद जाका मिटे अभिमान
1: सो जन नानक दर गए परवान
0: कोट कर्म करे हो तारे
1: श्रम पावे सगले बिर थारे
0: अनेक तपस्या करे अहंकार
1: नरक स्वर्ग फिर फेरे अवतार
0: अनेक जतन कर आत्म नहीं द्रवे
1: हर दर गे को कैसे गवे
0: आपस को जो पला कहावे
1: से पलाई निकट न आवे
0: तरफ की रेंजा का मन होए
1: गो नानक ताकी निर्मल सोए
0: जब लग जाने मुझते कछ होए
1: तब इसको सुख ना ही कोए
0: जब ए जाने मैं किच करता
1: तब लग गर्व जोन मैं फिरता
0: जब तारे को बैरी मीत
1: तब लग निचल ना ही चीत
0: जब लग मुह मगन संग माए
1: तब लग धर्मराय देश जाए
0: जब कृपा ते बंधन टूटे
1: गुर प्रसाद नानक हो छूटे
0: सहस कटे लक को उठतावे
1: तृप्त न आवे माया पाछे पावे
0: अनिक पोग भिख्या के करे
1: न तृप्त आवे खप खप मरे
0: बिना संतोख नहीं को राजे
1: सुपन मनोरथ बिरते सब काजे
0: नाम रंग सर्व सुख होए
1: बड़ भागी किसे प्राप्त होए
0: करन करावन आपे आप
1: सदा सदा नानक हर जाप
0: करन करावन करने हार
1: इसके हाथ कहा विचार
0: जैसी दृष्ट करे तैसा होए
1: आपे आप आप प्रभु सोए
0: जो किचकिनो सो अपने रंग
1: सब दे दूर सबू के संग
0: बूझे देखे करे विवेक
1: आपे एक आपे अनेक
0: मरे न बिनसे आवे न जाए
1: नानक सधी रहे आसमाए
0: आप उपदेश समझे आप
1: आपे रचिया सबके साथ
0: आपकी नो आपन विस्तार
1: सब कछु उत्साह होकर

0: दुखन आर्जा कटे,
1: संत के दुखन जमते नहीं छुटे,
0: संत के दुखन सुख सब जाए,
1: संत के दुखन नरक मह पाए,
0: संत के दुखन मत होए मलीन,
1: संत के दुखन शोभा ते हीन,
0: संत के हते को रखे न कोए,
1: संत के दुखन थान प्रष्ट होए,
0: संत कृपाल कृपा जे करे,
1: नानक संसंग निंदक भी तरे,
0: संत के दुखन ते मुख पवे,
1: संतन के दुखन काग ज्यों लवे,
0: संतन के दुखन सरब जोन पाए,
1: संत के दुखन त्रिगद जोन कर माए,
0: संतन के दुखन तृष्णा मह जले,
1: संत के दुखन सब को चले,
0: संत के दुखन तेज सब जाए,
1: संत के दुखन नीच निचाए,
0: संत दुखी का थाऊ को नाही,
1: नानक संत पावे ता वे पीगत पाहे,
0: संत का निंदक महा हताई,
1: संत का निंदक हिंट कर न पाई,
0: संत का निंदक महा हत्यारा,
1: संत का निंदक परमेश्वर मारा,
0: संत का निंदक राज ते हीन,
1: संत का निंदक दुखिया अरदीन,
0: संत के निंदक कौ सरब रोग,
1: संत के निंदक को सदा भी जोग,
0: संत की निंदा दोख मह दोख,
1: नानक संत पावे ता उसका पी होए मोख,
0: संत का दोखी सदा अपवित,
1: संत का दोखी किसे का नहीं मित,
0: संत के दोखी कौ दान लागे,
1: संत के दोखी को सब ते आगे,
0: संत का दोखी माँ अहंकारी,
1: संत का दोखी सदा बेकारी,
0: संत का दोखी जन्म मरे,
1: संत की दुख ना सुख ते टरे,
0: संत के दोखी को ना ही ठाओ,
1: नानक संत पावे ता ले मिलाए,
0: संत का दोखी महा संत का दोखी अद बीच ते टूटे,
1: संत का दोखी किते काज ना पहुँचे,
0: संत के दोखी को उद्यान प्रमाई है,
1: संत का दोखी उजड़ पाई है,
0: संत का दोखी अंतर ते थोथा,
1: ज्यो सास बिना मृतक की लोथा,
0: संत के दोखी की जड़ किछ नाही,
1: अपन बीजा पे ही खाहे,
0: संत के दोखी को अवर न राखन हार,
1: नानक संत पावे ता ले उबार,
0: संत का दोखी यूं बिललाए,
1: ज्यो जल बिहून मछली तड़फड़ाए,
0: संत का दोखी भूखा नहीं राजे,
1: ज्यो पावकीन दन नहीं त्रापे,
0: संत का दोखी छुटे इकेला,
1: ज्यो बुआर तिल खेत माहे दोहेला,
0: संत का दोखी धर्म ते रहत,
1: संत का दोखी सद मिथ्या कहत,
0: गिरत निंदक का तुरही पाया,
1: नानक ज्योतिष पावे सोई थिया,
0: संत का दोखी बिगड़ रूप हो जाए,
1: संत के दोखी को दरगह मिले सजाए,
0: संत का दोखी सदा सहकाई है,
1: संत का दोखी ना मरे ना जीव आई है,
0: संत के दोखी की पूजे ना आशा,
1: संत का दोखी उठ चले निराशा,
0: संत के दोख न

0: दिए रहे अगाए
1: मोर न तृष्णा लाग आए
0: मारे राखे एक आप
1: मानो कह किच नाही हाथ
0: का हुकम बूझ सुख होए
1: जिसका नामरा कंठ पर होए
0: सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए
1: नानक बिगन न लाग कोए
0: पुस्तक मन में कर निरंकार
1: कर मन मेरे सत व्यवहार
0: निर्मल रसना अमृत पियो
1: सदा सोहेला कर ले जियो
0: नैनो पेक ठाकुर का रंग
1: साध संग बिन से सब संग
0: चरण चलो मार्ग गोविंद
1: मिटे पाप जपिए हर बिंद
0: कर करम श्रवण हर कथा
1: हर दर्ज है नानक उज्जल मथा
0: बट पागी ते जन जग माहे
1: सदा सदा हर के गुण गाहे
0: राम नाम जो करे विचार
1: से तन अंत गणी संसार
0: तन मुख बोले हर
1: सदा सदा जानो ते सुखी
0: सदा सदा जानो ते एको एक एक पछाने
1: ये तो कियो सोजी जाने
0: नाम संग जिसका मन मानिया
1: नानक तिन्हे निरंजन जानिया
0: गुर प्रसाद अपने आप सूझे
1: जिसकी जानो तृष्णा बुझे
0: साध संग हर हर जस कहते
1: सर्व रोग ते हर जन रहत
0: दिन कीर्तन केवल बठान
1: गृहस्थ में सोई निर्वाण
0: ऊपर की सन की आशा
1: जिसकी कटिए जम की फासा
0: हर ब्रह्म की जिस मन भूख
1: नानक तिसे न लागे दुख
0: जिसको हर प्रभ मन चित आवे
1: तो संत सो एला नहीं डोलावे
0: जिस प्रभु अपना कृपा करे
1: सो सेव को किससे डरे
0: जैसा सा तैसा दृष्ट आया
1: अपने कारज में आप समाया
0: सोदत सोदत सोदत सिजिया
1: गुर पर साथ तत सब बुझिया
0: जब देखो तब सब किच मूल
1: नानक सो सुखम सोई असूल
0: नह किच जन्मे नह किच मरे
1: आपन चलते आप ही करे
0: आवन जामन दृश्य अंदृष्ट
1: आज्ञाकारी तारी सब श्रेष्ठ
0: आपे आप सगल में आप
1: अनेक जोगत रच था आपे ओ थाप
0: विनाशी नाही किच खंड
1: कारण तारे ओ ब्रह्मांड
0: अलख अपेब पुरख प्रताप
1: आप जपाए त नानक जाप
0: जिन प्रभ जाता सुशोभावंत
1: सगल संसार उधर है तिन मंत
0: के सेवक सगल उदाहरण
1: प्रभ के सेवक दुख विसारण
0: आपे मेल लय कृपाल
1: गुर का शब्जा पे निहाल
0: की सेवा सोई लागे
1: जिसनो कृपा करे बड़ पागे
0: नाम जपत पावे विश्राम
1: नानक दिन पर को उत्तम कर मान
0: किछ करे सुप्रभ के रंग
1: सदा सदा बसे हर संग
0: छुबाए होवे सो होए
1: करने हार पछाने सोए
0: सबका किया जन मीठ लगाना
1: जैसा सा तैसा दृष्टाना
0: जिसते उपजे तिस माहे समाए
1: ओए सुख निदान उन

गुर बचन हर ना मुचर गुर का सिख बेकार दे हट गुर का सिख बड़भागी है नानक सतगुर सिखो जी नार समार गुर की आ गया।

0: करण कारण सो प्रभ समरथ
1: देर कार का हो ना हमार बात
0: कीर्तन संचो वो भगवंत
1: काम
0: एक आशा को मन माए
1: सरोग नानक मिट जाहे
0: जिस तन को चार कुंड उठतावे
1: सो तन हर सेवा ते पावे
0: जिस सुख को नित बाचे मीत
1: सो सुख साधु सांग परीत
0: सो बाक करी पली करनी
1: सा सो बाप अज हर की सरणी
0: अनिक उपावी रोग न जाए
1: रोग मिटे हर आप खद लाए
0: धर्म निधान में हर नाम निधान
1: जप नानक दर गए परवान
0: मन पर बोधो हर के नाए
1: दय दिस तावते आवे ठाए।

0: भगत करो मन लाए,
1: मन वंचत नानक फल पाए,
0: संग न चालस तेरे तना,
1: तू क्या लपटाव है मूर्ख मना,
0: सुत मीत कुटुम अर्बंता,
1: इनते कहो तुम कवन सनाता,
0: राज रंग माया विस्तार,
1: इनते कहो कवन छुटकार,
0: अस्थस्ती रथ सवारी,
1: झूठा डांप चूट पासारी,
0: हिंदी तिस पूजे न बिगाना,
1: नाम बिसार नानक पछताना,
0: खुद की मत तू ले आने,
1: भगत बिना बहु डूबे से आने,
0: हर की भगत करो मन मीत,
1: निर्मल होए तुम्हारो चीत,
0: चरण कमल राखो मन माए,
1: जन्म जन्म के किल बिख जाहे,
0: आप जब ओबरा नाम जपाओ,
1: सुनत कहत रहत गत पावो,
0: सात पूत सतहर को नाओ,
1: सैस बैना ने गुण गाओ,
0: गुण गावत तेरी उतरस में,
1: बिरस जाए हो मैं बिख फैल,
0: ओहे अचिंत बसे सुखना,
1: सास गरा सर नाम समाल,
0: छाट स्यानब सगली मना,
1: साध सांग पावे सच तना,
0: हर पूंजी संच करो बिहार,
1: इहां सुख दर गह जयकार,
0: सरम निरंतर एको दे,
1: कौन नानक जाके मस्तक लेख,
0: एको जप एको साला,
1: एक सिमर एको मन आहे,
0: एक के गुण गाओ अनंत,
1: मंथन जापे एक।

0: अंजना की मांगो तूर
1: बार बार अमेर शारदा पूर
0: सदा सदा प्रभु की गुण गावो
1: सास सास प्रभु तुम्हें ते आवो
0: चरण कमल सियो लागे प्रीत
1: अर्ज करो प्रभु की नत नीत
0: एक ओटे को आधार
1: नानक मांगे नाम प्रभु सार
0: प्रभु की दृष्टि महासुख होए
1: रस पावे बिरला कोए
0: जिन चाखिया से जन

0: प्रभु सोए
1: नानक नाम रते सुख होए
0: सेवकी मनसा पूरी पई
1: सतगुर ते निर्मल मत लई
0: जन को प्रभु होयो दयाल
1: सेवकी नो सदा निहाल
0: बंधन काट मुक्त जन पया
1: जन्म मरण दुख भ्रम गया
0: इच पुनी सरदास पूरी
1: रव रहया सत्संग हजूरी
0: जिसका साथ इन लिया मिलाए
1: नानक भगति नाम समाए
0: तो क्यों बिसरे जे काल न पाने
1: तो क्यों बिसरे जे किया जाने
0: तो क्यों बिसरे जिन सब किछ दिया
1: तो क्यों बिसरे जे जीवन जिया
0: तो क्यों बिसरे जे अगन में राखे
1: गुर प्रसाद को बिरला लाख
0: तो क्यों बिसरे जे भिक्षे काढे
1: जन्म जन्म का टूटा गाढे
0: गुर पूरे तेहे बुझाया
1: रवे अपना नानक जन त्याया
0: साजन संग करो हे काम
1: आन त्याग जपो हर नाम
0: सिमर सिमर सिमर सुख पावो
1: आप जपो अवरा नाम जपावो
0: भगत पाई तरी संसार
1: बिन भगति तन हो सीशार
0: सर्व कल्याण सुख निध नाम
1: बूढ़त जात पाए विश्राम
0: सगल दुख का होवत नास
1: नानक नाम जपो गुणतास
0: उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ
1: मन तने अंतर एही सो आओ
0: नेत्रो पेख दरस सुख होए
1: मन भिक्षे साध चरण तोए
0: भग जना के मन तन रंग
1: बिरला को पावे संग
0: एक बसदी जे कर मया
1: गुर प्रसाद नाम जप लया
0: ताकि उपमा कहीं न जाए
1: नानक रहे सर्व समाए
0: प्रभक संत दीन दयाल
1: भगत वचल सदा कृपाल
0: अनाथ नाथ गोविंद गोपाल
1: सर्व कटा कर्त प्रतिपाल
0: आद पुरख कारण करतार
1: भगत जना के प्राण आधार
0: जो जो जपे सोए पुनीत
1: भगत पाए लावे मन हीत
0: निर्गुणिया रे नीच जान
1: नानक तुमरी शरण पुरख भगवान
0: सर बैकुंठ मुक्त मोख पाए
1: एक निमक हर के गुण गाए
0: अनिक राज भोग बड़े आई
1: हर के नाम की कथा मन पाई।

0: तब कहते होता,
1: जब तारी आपन सुन समाद,
0: बैर विरोधी संग कमात,
1: जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत,
0: जब हर किसो को किसे भी आपत,
1: जब आपन आप पार ब्रह्म,
0: मोह कहाँ किसो बत परम,
1: आपन खेल आप वर्तीजा,
0: नान करने हार न दूजा,
1: जब होवत प्रभ केवल तनी,
0: बंद मुकत को किसको गनी,
1: जब एक हर अगम अपार,
0: जब नरक सुर को कौन अवतार,
1: जब निर्गुण प्रभ सह सबाए,
0: जब शिव सकल कहो कित ठाए,
1: जब आप है आप अपनी ज्योतर है,
0: तब कवन निडार कवन कत डरे,
1: आपन चलित आप करने हार,
0: नानक ठाकुर अगम अपार,
1: अविनाशी सुख आपन आसन,
0: जन्म मरण को कहाँ विनाशन,
1: जब पूर्ण करता प्रभ सोए,
0: जब जम की त्रास कहो किस होए,
1: जब अवगत अगोचर प्रभ एका,
0: तब चितर गुपत किस पूछत लेखा,
1: जब नाथ निरंजन अगोचर अगाधे,
0: तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे,
1: आपन आप ही सृजा,
0: नानक आपन रूप आप ही उपरजा,
1: जय निर्मल पुरख पत होता,
0: जय बिन मैल कहो क्या तोता,
1: जय निरंजन निरंकार निर्माण,
0: जय कौन को मान कौन अभिमान,
1: जय स्वरूप केवल जगदीश,
0: जय शाल चिदर लगत को कीस,
1: जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावे,
0: जय किसे भूख कवन ते बतावे,
1: करण करावण करने हार,
0: नानक करते का नहीं सुमार,
1: जब अपनी शोभा अपन संग बनाई,
0: तब कवन माए बा मित्र सुत पाई,
1: जय सर्व कला आपे परवीन,
0: जय वेद देव कहा को चीन,
1: जब आपन आप उतार है,
0: तो सगन अपसगन कहा विचार है,
1: जय आपन ऊंच आपन आप नेरा,
0: जय कौन ठाकुर कौन कही है चेरा,
1: बिस्मन बिस्म रहे बिस्मात,
0: नानक अपनी गत जान हो आप,
1: जय अचल अच्छेद अभेद समाया,
0: उहा किसे भी आप पत माया।

0: पुनते पई कहावत
1: ओ नरको स्वर्ग बंछावत
0: आल जाल माया जंजाल
1: हमे मोह परम पै पार
0: दुख सुख मान अपमान
1: अनेक प्रकार की ओ बखेहान
0: अपन खेल आप कर देखे
1: खेल संकोचे तो नानक एक
0: जय अभिगत भगत तें आप
1: जय पसरे पसार संत प्रताप
0: तो बाक का आपे धनी
1: उनकी शोभा उनहु बनी
0: आपे कोतक करे आनंद चौज
1: आपे रसपो गण निर्जोग
0: भावे तिस आपन

0: नाम सोई जन पाए,
1: तो समदर्शी तत् का बेता,
0: नानक सगल श्रेष्ठ का जेता,
1: जी जंतर सप्ता के हाथ,
0: दीन दयाल नाथ को नाथ,
1: जिस राखे तिस कोए न मारे,
0: तो मुआ जिस मनो बिसारे,
1: तिस तज अवर कहा को जाए,
0: सब सिरे एक निरंजन राय,
1: जी की जुगत जाके सब हाथ,
0: अंतर बाहर जानो साथ,
1: गुण निदान पाए गुण निदान बेअंत अपार,
0: नानक दास सदा बलिहार,
1: पूरन पूरे दयाल,
0: सभी ऊपर होवत कृपाल,
1: अपने कर्तव्य जाने आप,
0: अंतर जामी रहो बे आप,
1: पाले जी अन बो पात,
0: जो चोर चो सच से ते आत,
1: जिस पावे तिस ले मिलाए,
0: भगत करे हर के गुण गाए,
1: मन अंतर विश्वास कर मान्या,
0: कर्ण हार नानक एक जान्या,
1: जन लागा हर एक के नाए,
0: जिसकी आस न बिरथी जाए,
1: सेवक को सेवा बनाई,
0: हुकम बूझ परम पद पाई,
1: इससे ऊपर नहीं विचार,
0: जाके मन बसे अहंकार,
1: बंधन तोड़ पाए निर्वैर,
0: इन पूजे है गुर के पैर,
1: ए लोक सुखी है पर लोक सोहेले,
0: नानक हर प्रवे आपे मेले,
1: साध संग मिल करो आनंद,
0: गुण गावो प्रा परमानंद,
1: राम नाम तत् करो विचार,
0: दुर्लभ देखा करो उधार,
1: अमृत बचन हर के गुण गाओ,
0: प्राण तरण का हे सो आओ,
1: अंतर आठ पहर प्रभ पेखो नेरा,
0: मिटे अज्ञान बिन से अंधेरा,
1: तुम उपदेश हृदय बसावो,
0: मान इच्छे नानक पर पावो,
1: हलत पलत दुए लेओ सवार,
0: राम नामे अंतर और तार,
1: पूरे गुर की पूरी दिखिया,
0: जिस मन बसे तिस साच परिख्या,
1: मन अंतर नाम जपो लिवलाए, मन तन नाम जपो लिवलाए,
0: दुख दर्द मन ते पौ जाए,
1: सच व्यापार करो व्यापारी,
0: डर गए निभे के तुम्हारी,
1: एका टेक रखो मन माहे,
0: नानक बहुर न आवे जाहे,
1: किससे दूर कहाँ को जाए,
0: उबरे राखण हार ते आए,
1: निरपौ जपे सगल भाव पौ मिटे,
0: रब कृपा ते प्राणी छुटे,
1: जिस प्रभ राखे तिस नाही दुख,
0: नाम जपत मन होवत सुख,
1: चिंता जाय मिटे अहंकार,
0: इस जन को कोई न पहुंचन हार,
1: सिर ऊपर ठंडा गुरसूरा,
0: नानक ताके कारज पूरा,
1: मत पूरी अमृत जाकी दृष्ट,
0: दर्शन पे कतोदर श्रेष्ठ,
1: चरण कमल जाके अनूप,
0: सफल दर्शन सुंदर हर रूप,
1: तन सेवा सेवक परवान,
0: अंतर जामी पुरख प्रदान,
1: जिस मन बसे सो होत निहाल।

0: देखा जिस आप दिखाए
1: नानक ते जन सो जी पाए
0: सो अंतर सो बाहर अनंत
1: कट कट ब्या परे भगवंत
0: करण माहे आकाश प्याल
1: सर्व लोक पूरण प्रतपाल
0: बंतिन पर्वत है पार ब्रह्म
1: जैसी आज्ञा तैसा कर्म
0: पौन पानी बैसंतर माहे
1: चार कुंट दह दिसे समाहे
0: ते पिन नहीं को ठाओ
1: गुर प्रसाद नानक सुख पाओ
0: वेद पुराण सिमरत में देख
1: ससियर सो नखतर में एक
0: वाणी प्रभु की सबको बोले
1: आपा डोल न कबहू डोले।

0: संत जना का पेखन सब परम,
1: संत जना के हृदय सब धर्म,
0: संत जना सुने सुब बचन,
1: सर्वव्यापी राम संग रचन,
0: जिन जाता तिस की एह रहत,
1: सप्त बचन साधु सब कहत,
0: जो जो हुई सोई सुख माने,
1: करण करावण हर प्रभ जाने,
0: अंतर बसे बाहर भी ओही,
1: नानक दर्शन देख सब मोही,
0: आप सत किया सब सत,
1: इस प्रभ ते सकली उत्पत,
0: इस पावेता करे विस्तार,
1: इस पावेता एक अंकार,
0: अनिक कला लखी नह जाए,
1: जिस पावे तिस लए मिलाए,
0: कवन निकट कवन कहिए दूर,
1: आपे आपे आप परपूर,
0: अंतर्गत जिस आप जनाए,
1: नानक दिस जने आप बुझाए,
0: सर्व पूत आप वरतारा,
1: सर्व नयन आपे खण हारा,
0: सगल से मगरी जा का तना,
1: आपन जासे आप ही सुना,
0: आवन जाने खेल बनाया,
1: आज्ञाकारी किन्नी माया,
0: सबके मत अलिप्तो रहे,
1: जो किछ कहना सो आपे कहे,
0: आज्ञा आवे आज्ञा जाए,
1: नानक जा पावे ता ले समाए,
0: इस्ते होए सुना ही बुरा,
1: बुरे कहो किने कछ करा,
0: आप पला कर तूत अतनी की,
1: आपे जाने अपने जी की,
0: आप साच तारी सब साच,
1: ओ तब होते अपन संग राच,
0: ताकि गतमित कहीं न जाए,
1: दूसर होए तो सो जी पाए,
0: इसका किया सब परवान,
1: गुर परसा नान के हो जान,
0: जो जाने तिस सदा सुख होए,
1: आप मिलाए ले प्रभ सोए,
0: ओ तनवंत कुलवंत पतवंत,
1: जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत,
0: तन तन तन जन आया,
1: जिस परसा सब जगत तराया,
0: जन आवन का

0: की दूर मन मंग
1: आप छोड़ बेनती करो
0: साध संग अगन सागर तरो
1: हर तन के पर ले पंडार
0: नानक गुरपुरे नमस्कार
1: केम कुशल सहज आनंद
0: साध संग पच परमानंद।

0: प्रधान पुरख प्रगट सब लोए
1: सब ते ऊंच पाए स्थान
0: गौर न होवे आवन जान
1: हरतन खाट चले जन सोए
0: नानक जिसे प्राप्त होए
1: खेम शांत रिद्ध नव निद
0: बुद्ध ज्ञान सरब ते सिद्ध
1: विद्या तप जोग प्रव ध्यान
0: ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान
1: चार पदार्थ कमल।

0: सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है।
1: आप हाथ दे मुझे उभरी है, मरण काल का त्रास निभरी है।
0: पूजो सदा हमारे पच्छा, सिरियस तुझो करे और अच्छा।
1: राख ले हो मोहे राखण हारे, साहेब संत सहाय प्यारे।
0: दीन बंधु स्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दश कंता।

0: सब लोग सवारा नमस्कार है ताहे हमारा
1: जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जचनी उपजायो
0: आद अंत एक अवतारा सोई गुरु समझेओ हमारा
1: नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिने आप सवारी
0: सिवकन को सब गुण सुख दियो सतरन को पल मोहबत कियो
1: कट कट के अंतर की जानत पले बुरे की पीर पहचानत
0: चीटी ते कुंचर अस्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर
1: संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी
0: एक एक की पीर पछाने कट कट के पट पट की जाने
1: जब युद्ध करख करा कर तारा प्रजा तर तब देह अपारा
0: जब करख करत हो कबू तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ
1: जेते बदन श्रेष्ठ सब तार है आपे अपनी बूझ उचार है
0: तुम सब ही ते रहत निरालम जानत भेद भेद अर आलम
1: निरंकार निर्विकार निरलंब आद नील अनाद सांभ
0: ताका मूड उचारत पेदा जाको पेव न पावत बेदा
1: ताको कर पाण अनुमानत महामूड कछ पेद न जानत
0: महादेव को कह सदा शिव निरंकार का चीनत नह पे
1: आपे अपनी बुद्ध है जेती बरनत पेन पेन तोहे तेती
0: तुमरा लखा न जाए पसारा कह बिस सजा प्रथम संसारा
1: एक रूप अनूप स्वरूपा रंक पयो राव कही पूपा
0: अंडज जेरज से तज कीनी उत्पुज खान भौर रच दीनी
1: कहूँ फूल राजा वह बैठा कहूँ सिमट पे ओ संकरे कैठा
0: सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंभव आज जुगा स्वरूप से अंभव
1: अब रक्षा मेरी तुम करो सिख बार असिख संघरो
0: दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेच करो रण काता
1: जे तू तरणी परे तिनके दुष्ट दुख्त वह मरे
0: पुरक जवन पक परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे
1: जो कल को एक बार ते आए है ताके काल निकरने आए है
0: रक्षा होए तो है सब काला दुष्ट रिष्ट टरे तत्काला
1: कृपा दृष्टन जाए निहर हो ताके ताप तनक मैं हर हो
0: रिद्ध सिद्ध कर मो सब होई दुष्ट छाछ वे सके न कोई
1: एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास्ते ताए उबारा
0: जिन नाम तिहारो कहा दारिद दुष्ट दोखते रहा
1: खड़क के तमें शरण तिहारी आप हाथ दे ले हो उबारी
0: सरब ठोर मोह सहाय दुष्ट दोखते ले हो बचाई
1: कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूरण शुभ राता
0: किल्विक सकल देह को हरता दुष्ट दोखियन को छय करता
1: श्री तुझ पे दयाला पूरण करा ग्रंथ तत्काला
0: मन बाछत फल पावे सोई दुख न तिसे बे आप

0: क्या नहीं करते है सच्चा नाम मेरा आधार आधार मेरा जिनको खाई
1: कर शांत सुख माने आए बसे आज
0: इच्छा सब कुछ आई सदा कुर्बान किता गुरु बेटो जिसने बड़े आईया कहे नान सुनो संतोष अवतरो पे आरो सच्चा नाम मेरा आधारो बाजे पांच शब्द तित कर सपागे शब्द बाजे कला जित कर तारिया पंच दूत दुद्वास की ते काल कंटक मारिया।

अर्जुन हर गोविंद नाम सिमरऊ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आही है जिस जिठे सब दुख जाय। तेग बहादुर सिमर करनाउ निध आवे ताए सब थाई हो सहाय। दसवीं पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब सब थाई हो सहाय। दसम पातशाह दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान करके बोलो जी वाहेगुरु। पंजा प्यारे चौं सब जादे चालिया मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन नाम जपिया बंड छकिया देख चलाई तैग वाहे। देख के अंडट कीता तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोले जी वाहेगुरु। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत शीश दिते बंद बंद कटवाए कन आरिया नाल चरवाए। चरखड़ियां ते चढ़े खोपरियां तुरवाइयां गुरुद्वारियां दी सेवा ले कुरबानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिख केसां सुआसन नाल निभाई। जिन्हां शहीद सिंघां सिंघणियां दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोले जी वाहेगुरु। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धरके बोले जी वाहेगुरु। प्रथम है सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। चित आवे चित आवन का सदका सर्व सुख होवे जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां विच आयत देख देख फतेह बंदकी पैज। पंथ की जीत श्री साहब जी सहाय गुरु खालसा जी के बोल वाले बोलो जी वाहेगुरु। सिखा नु सिखी दान केस दान रह दान भविक दान बसा दान भरोसा दान दान असर दान नाम दान। श्री अमृतसर जी दे इशनान चौंकियां झंडे पंगे जुगो जुगो टल। धर्म का जयकार खालसा जी बोले जी वाहेगुरु। सिखा दा मन नीमा मत उची मत पत रख आप अकाल पुरखंतर जामी वाहेगुरु। हे निरंकार अपने पंथ दे सदा सहाई दतार जियो। श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरुद्वारे गुरधामां जिन्हां तों खालसा पंथ नूं विछोड़िया गया कुल दर्शन दीदार सेवा संभाल दा दान अपने खालसा जी नूं बख्शिश करो जी। हे नमाणियां दे माण सतगुर नितानियां दे तान सतगुर न्यासरियां दे आसरे। हे अकाल पुरख सच्चे पिता वाहिगुरु जी आप जी दे चरण कमलां पास अरदास बेनती। तन तन श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी आप जी के शहीदी गुरपुरब नूं मुख रखदिआं होइआं आप जी दीआं संगतां वलों आप जी की हजूरी अंदर श्री सुखमनी साहिब जी की गुरबाणी के पाठ हुए हैं। होर बेअंत बाणियां दे पाठ किए गए हैं जिन्हां जिन्हां पावनियां सहित आप जी दीआं संगतां ने आप जी की हजूरी अंदर सतगुरु जी गुरबाणी के पाठ किए हैं। सो पावनियां सरबत दीआं गुरमत अनुसार संपूर्ण करनिया। इसी तरह आप जी संगतां नूं गुरु घर का प्रेम बख्शिश करना शुकराना करते हुए आप जी की हजूरी अंदर पवित्र कड़ा प्रसाद की देख सदकी हाजिर हुई है। दर प्रवान हो गए प्रवान होया प्रसाद साध संगत विच वरते सतगुरु आप कृपा करनी चढ़ती कला की दात बख्शिश करो तंदुरुस्तियां बख्शिश करो देसां प्रदेशां अंदर सहायता करनी कारोबारा में तरक्कियां बख्शिश करनिया। गुरबाणी के पाठ करदियां अनेक प्रकार दियां गलतियां हो गईयां होणगियां बच्चे समझ के मुआफ करना अगे तो शुद्ध ते स्पष्ट बाणी उचारण की बलबुल समर्था बख्शिश करनी सरबत दे कार्ज रास करियो सतगुरु जी। जो जी आप जी की चरण शरण बचावे सो राजी जावे सुख होवे नाम चितावे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा।

सो इतनी सेवा प्रवान करनी। गुरबाणी का शब्द कीर्तन करदे आ, गुरबाणी उच्चारण करदे आ, एक नहीं अनेक प्रकार दीयां गलतियां भुलां त्रुटियां रह जांदियां ने। संगत बख्शण योग है, सतगुर बख्शण हार हन बख्श लैण। आओ साडे तो उपरंत अति सत्कारयोग ज्ञानी जी भाई कुलदीप सिंह जी आप संगतों नूं गुर शब्द विचार इतिहास राही निहाल करनगे। गज के बुलाओ फतेह, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

कुदरत कबण हमारी, साध संग नानक जस गायो जो प्रभ की अत प्यारी। डंडौत बंदन अनक बार सर्व कल

पांच नारद के मिटवे फूटे, कह कबीर गुर कृपा छूटे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। राम कली महला तीजा, आनंद एक ओंकार, सतगुर प्रसाद।

संत साजन पए सरसे पूरे गुर ते जानी। बिनवंत नानक गुरु चरण लागे वाजे अनहद तूरे सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर।